0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापडा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिनि उते सुठी खुराक ढोरनि जी ज़रूरत आहे।
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: जारी रखंदी ईरानी सदर मसूद पज़िक शान ईरान लाइ पाकिस्तान जे असूली सफारतकारी अमन जी कोशिश के सारा कई अमेरिका ईरान इस्लामाबाद मुआहदे तरफ चीनी सदर अमेरिकी सदर से मुलाकात दौरान मुतालबो कयो त चीनी सदर उम्मीद जाहिर कई त अमेरिका ईरान एक जामे मुआहदे ताईं बे पहुचंदा जैमें एटमी मुआहदे समेत बेन मामलन जो जिक्र हों चीन ए अमेरिकी फौज सदाई जहारियत खिलाफ जंग विड़ी आहे अचो त गॾिजी बिन्ही मुल्कन जे अवाम जे उम्मीदन ते पूरा लहूं ऐं ज़िम्मेवारीअ जो मुज़ाहिरो कयूं ऐं गॾिजी बहितर दुनिया जी तामीर कयूं अमेरिका जे दौरे ते पहुतल चीनी सदर जी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कई आलमी सूरतहाल समेत मुख्तलिफ़ मामलन ते ख्यालन जी डे वट कई वई डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ऐं चीन जे सहकार खां सवाइ दुनिया जे मसलनि कढ़ण मुश्किल आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी गडि॒यल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल सां मुलाकात वज़ीर आज़म चयो आहे त यूएन सेक्रेटरी जनरल 6 अक्टूबर ते पाकिस्तान ईंदो पाकिस्तान माज़ी जीअं अमुन जे क़याम लाइ ख़िदमतूं सरअंजाम ॾियण लाइ तयार आहे ख़िते में अमुन लाइ हरमज़ लंग में वापारी आज़ादी ज़रूरी आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ਕਿਰਿਆਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲਾਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਿਡ
1: ਸਰਿਆ ਗਾਰਡਰ ਟੀਅਰ ਏਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੇਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਰੀਅਤ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਯਚੂ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲਾਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601000
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: Hey guys, this is me Neha Kakkar.
1: And this is Bilal Saeed. You just watched our new music video, Dilli Wali Hai.
0: Hope you enjoyed. If you really did, do not forget to like, comment.
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam Ne Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: This program is brought to you by
3: Bank Islam Ne Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569. खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569.
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-35-92120.
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GFM 94
9: Book Studio Season 15.

पाकिस्तान विच ओभर में अमुन वारन कोशिशन के आसान बनाने लाय भरपूर किरदार अदा कर रो है। कारोबार ए सीड़पकारी लाय खिते में डिगे मुद्दे लाय अमुन इंतहाई अहम है। न्यूयॉर्क में सीड़पकारन के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है तो पाकिस्तान की मैशियत मुस्तकम थियण बाद तरक्की कर रही है। मुल्क में वड़े पैमाने ते सुधारा कया पा वन मशियत के डिजिटाइज कर टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस से कम तेजी से जारी है। पाकिस्तान वट ज़राइत मैदनियात तवानाई समेत केतर ही शोबन में सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद है। बंदरगाहन ए बहरी जहाजन वाली सनत में भी सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद है जन मां फायदो हासिल कर सकते तो। केपीके में गवर्नर राज से मुशावरत थी है। केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वकाब दे हिकमत अमली ना है। पीटीआई वारा पान गिरफ्तारियों दे रहे हैं। केपीके हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बनाने चाहे थी। पीटीआई वारा पान फरार थी रहा है। मके दिफाई मुहिदे तहत सऊदी अरब पाकिस्तान ए तुर्क के परदेही वजीर की मुलाकात टिन्ही मुल्क के सऊदी शहर ए मुआशी हंधन ते हुसैन के हमलन की मजम्मत मके दिफाई मुहिदे कमेटीज ए वर्किंग ग्रुप के क्याम जो जायजो वरतो वो खिते में जटादार अमुन लाय कोशिशों जारी रखने ते इतफाक। बलूचिस्तान के जिम्मेवारे इलाके में अफगान जारियत ए दहशतगर्दन के दाखिल थियण की कोशिश नाकाम। फोर्सिस की जवाबी कार्रवाई में केतर ही अफगान तालिबान ए दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद चिमन सेक्टर ते अफगान तालिबान रजीम की जारियत वाली कोशिश के नाकाम बनाए वो। पाक फौज जारियत कदड़ अफगान तालिबान के चेक पोस्टिस के क्वाडकॉप्टर ए मार्क फायर कर तबाह कर छो जैसे नतीजे में केतर ही अफगान तालिबान ए दहशतगर्द मारजी वया। वजीर आजम शहबाज शरीफ जी न्यूयॉर्क में गरियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल ए लुबनानी हमुनसिब से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ गरियल कौमन में एंथोनी के किरदार के वाखाण कई ए फलस्तीन तकरार के हल से जोर भर। लुबनानी वजीर आजम से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ बिन तरफन लागापन के हथी डे इतफाक किया।

0: मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबलो एक डुहारी मारजी वयो एक एलकार जख्मी पुलिस मौजूब शाह लतीफ टाउन में फास्ट यूनिवर्सिटी वेझो डुहारियुनि सां मुकाबलो थियो मारजी वयल डुहारी जे टीह वरनि जे रावल पुटु सरवत तौर सुञाणप थी आहे मुकाबले दौरान पुलिस एलकार सलीम पुटु हज़रत ख़ान ज़ख़्मी थियो ऐं हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर पाण खे गोली हणी आबाद करे छॾियो लतीफ़ाबाद नंबर 12 जे रहवासी 40 वरनि जे राहिल अबासी ज़िंदगी जो अंत आंदो वाके खां पोइ पुलिस पहुची लाश जी एम्बुलेंस ज़रिए अस्पताल मुंतकिल कयो वाके जा सबब मालूम न थी सघिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-310-5109।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: बैंक इस्लामनी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे
3: हां साईं गाल भी एड़ी आहे
2: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे
3: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे
2: छा छा
3: ओहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो
2: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो
3: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुद्ध अजी वठी अच
2: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
3: हा साईं हा
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
7: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
9: अस्सलाम वालेकुम अदा
10: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
10: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी जल्दी आए
9: अदा जल्दी कर मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 03013992836
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: थियण बाद तरक्की करी रही है मुल्क में बड़े पैमाने ते सुधारा कया पे वजन मशीयत के डिजिटाइज करण टेक्नोलॉजी है ई गवर्नेंस ते कम तेजी साथ जारी है पाकिस्तान वट ज़राइत मैदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारीअ जा मौक़ा मौजूदु आहिनि बंदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत में बि सीड़पकारीअ जा मौक़ा मौजूदु आहिनि जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे KPK गवर्नर राज ते मुशावरत ते आहे KPK जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली न आहे पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि KPK हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि मके दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब पाकिस्तान ऐं तुर्किया में परडे॒ही वज़ीरनि जी मुलाक़ात टिनी मुल्कनि जे सऊदी शहरनि ऐं मुआशी हंधनि ते होसियुनि जे हमलनि जी मज़म्मत मके दिफ़ाई मुआहिदे कमेटीज़ ऐं वर्किंग ग्रुप जे क़याम जो जाइज़ो वरितो वियो ख़िते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जे न्यूयॉर्क में गडियल कौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं लुबनानी हम मुनसिब सां मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गडियल कौमनि में एंथोनी गुतरेस जे किरदार जी वाखाण कई ऐं फलस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर-ए-आज़म सां मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ॿिनि तरफ़नि लाॻापन खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो। ईरान अमेरिका सां जंग जारी रखण नथो चाहे, हाणे जंग ख़तम करण जो फ़ैसिलो अमेरिका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूननि तहत मुआहिदो करण चाहे थी त तेहरान तयार आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्ची चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझु शर्तनि ते अमल करे त आबना अर्मुज खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलूचिस्तान खां ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दनि जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। फोर्सिस जी कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब केस में हिंदुस्तानी फितने जा वाॻियल दहशतगर्दनि जे चुरपुर जो पतो लॻाइण बाद कार्रवाई कई वई, जंहिं दौरान हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि जे मुकमल ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कार्रवायूं जारी रहंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खु़शख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नस्त गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर, असा जगह जो डारियों, जगह जा पावा आई पाइप, डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी, राबते लाए फौजी अब्दुल करीम, 0301-54-4456, आई तौकीर अहमद, 0306-1623-793।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-3105-109,
0: 0300-5109। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग, कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। जल्दी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: इस्लामाबाद ॾांहुं ईंदड़ वींदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपीए पंजाब खां वेज़ ते ट्रैफिक मुअतल अटल अटक पुल खे लोहे कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि जे कंटेनर पहुचाया विया। मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप। ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन खां आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
6: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
7: 3 4 3 7 2 0 2 4 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السلام علیکم ادا.
8: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
7: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا؟
9: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
7: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
8: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
9: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 03013992836.
11: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو
1: عاشق ہونڈا شوروم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اکتیار 3S ڈیلر आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: इस्लामाबाद में ईंदड़ वींदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद वो केपी के पंजाब का ईंदड़ वींदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअतल अटक पुल के लोहे कोका कंटेनर रखी मुकम्मिल तौर से बंद वो पंजाब के भी मुख्तलिफ़ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया वह मुख्तलिफ़ रोडन के बंद वो केपीके में गवर्नर राज से मुशावरत थी है पीटीआई बिल लॉन्ग मार्च केपीके में गवर्नर राज से मुशावरत थी है पीटीआई बिल लॉन्ग मार्च खत्म करने वाली है केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली ना है पीटीआई वारा पान गिरफ्तारियों दे रहा है केपीके हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बनाने चाहे थी पीटीआई वारा पान फरार थी रहा है दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ है तो उन भेरे फैसलायती झेड़ो थी पीटीआई वरी कदें इस्लामाबाद जो रुख न कंदी वजीर आजम शहबाज शरीफ जी न्यूयॉर्क में गरियल कौमन जी सेक्रेटरी जनरल ए लुबनाई हम मुनसिब से मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ गरियल कौमन में एंथोनी गोतरिस जी किरदार जी वाखाण कई फलस्तीन तकरार जे हल ते जोर भरो लुबनाई वजीर आजम सा ईरान अमेरिका से जंग जारी रख नो चाहे हाने ईरान अमेरिका से जंग जारी रख नो चाहे हाने जंग खत्म करने जो फैसले हल थी सकन था तो एक बे के कत्ल करण की जरूरत ना है अमेरिकी हुकूमत आलमी कानून तहत मुआहदो करण चाहे थी तो तेहरान तैयार है ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची है तो जैसे अमेरिका कुछ शर्तन से अमल करे तो आबना हर्मुज़ के सतन ढीन में खोलो वो बलूचिस्तान का ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दन की कोशिश नाकाम फोर्सेज की कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो एक दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मौजूद केस में हिंदुस्तानी फितने जा वागल दहशतगर्दन के चुरपुर जो पतो लगाने बाद कार्रवाई कई वही चिमन सेक्टर में अफगान जारियत दहशतगर्दन के दाखिल थे की कोशिश नाकाम फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में केतरा ही अफगान तालिबान दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मौजूद अफगान तालिबान रजीम की जारियत वाली
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
2: असली चीजान चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोर जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोर सेहतमंद। जी जान चारो मसालो, जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-3105-109, 0300-3105-109।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सऊदी अरब जी मदद करण वारन तरीकन ते गौर कंदा मके दिफाई मुआहदे तहत सऊदी पाकिस्तान ए तुर्किया जे परडे वजीरन जी मुलाकात टिनी मुल्कन जे सऊदी शहर ने मुआशी हंधन ते हुसैन जे अमलन जी मज़म्मत खिते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़।

इस्लामाबाद ना ईंदड़ वींदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद कयो वयो। केपी के पंजाब का ईंदड़ वींदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल थी वही। अटक पुल के लोहे कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद कयो वयो। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहरन में कंटेनर्स पहुंचाया वया, मुख्तलिफ रोडन के बंद कयो वींदो।

पीटीआई जी सियासी कमेटी जो अहम इजलास पिशावर में तलब सीनियर अगवाणन जी सदारत हेठ थींदड़ इजलास में लॉन्ग मार्च बाबत अहम फैसलो कयो वेंदो। शौकत यूसुफ़ज़ई चयो आहे त इन भेरे लॉन्ग मार्च कुछ हासिल करण खां सवाइ ख़त्म न थींदो। मार्च बाबति फैसलो अञा ताईं हतमी आहे।

अमेरिका सां जंग जारी रखण नथो चाहे। हाणे जंग ख़तम करण जो फ़ैसिलो आहे, अमेरिका खे करणो आहे। ईरान सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़कारनि ज़रिया थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूननि तहत मुआदो करण चाहे थी त तेहरान तयारु आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझ शर्तनि ते अमल करे त आबन हरमुज़ खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। बलूचिस्तान खां ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दनि जी कोशिश नाकाम। फोर्सेस जी कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब केस में हिंदुस्तानी फितने जा वागेल दहशतगर्दनि जी चुरपुर जो पतो लॻाइण बाद कार्रवाई कई वई। चिमन सेक्टर में अफ़गान जारियत ऐं दहशतगर्दनि जे दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। फोर्सेस जी जवाबी कार्रवाई में केतिरा ई अफ़गान तालिबान ऐं दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब अफ़गान तालिबान रजीम जी जारियत वारी कोशिश खे नाकाम बणायो वियो। अफ़गान तालिबान जे चेक पोस्ट खे क्वाड कॉप्टर ऐं मार्टर फायर करे तबाह करे छॾियो। सिंध हुकूमत पारां कूड़नि ख़बरनि जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वठण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्जिली नामेमर जी सदारत हेठि इतलात खाते जो इजलास। समूरनि शोबनि जे डायरेक्टर्स खे फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग ऐं सराइती मीडिया हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शर्जिली नामेमर चयो आहे त कूड़नि ख़बरनि ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान रसाइण वारी कोशिश बर्दाश्त न कबी। फेक न्यूज़ जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वरिती वञे। KTN न्यूज़ रादण जे रिपोर्टर मुज़फ़र गुरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ कलम धणी ऐं वकील सरापा एहतजाज। हैदराबाद में वकीलनि पारां साफ़ी मुज़फ़र गुरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मेयर फुलजी स्टेशन फरीदाबाद में कलम धणियुनि जो एहतजाज जारी आहे। साफ़ी जे घर ते चढ़ाई कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो कयो वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल BEd 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ना पहिरियों कदम वधायो।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मनि जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-1156 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद परेशान है मेहरा मिन के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करहल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीटीए जो 27 सितंबर से इस्लामाबाद जहां ऐलान लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताई मुलतवी करण जो फैसलो। पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पिशावर में अहम इजलास, लॉन्ग मार्च की तैयारियों ए हिकमत अमली जो जायजो वरतो। सीनियर क्यादत लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी और जेवीआई से भी राबते जो फैसलो किया है। केपी के वे वजीर सुहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च लाय तैयारियों मुकम्मल हैं, पोते न हटांदासीं।

पूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो कीअं पीअं पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटर वे से ट्रैफिक मुअतल आहे। अटक पुल खे लोही कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया, मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो आहे।

न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ए तुर्किया के परदेही वसीरन विच में मुलाकात बात थी। मुल्कन के आला फौजी सरबराहन जो इजलास सऊदी अरब में तरब सऊदी शहरन ते हमलन बाद पैदा थियल सूरतहाल हिकमत अमली ते गौर कयो वेंदो। सऊदी परदेही वज़ारत मूजिब टिन्ही मुल्कन जा फौजी अमलदार दिफाई मुआहदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारन तरीकन ते गौर कंदा। टिन्ही मुल्कन जे परदेही वज़ीरन खत्ते में जटादार अमन लाए कोशिशू जारी रखण ते भी इतफाक़ कयो।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर ऐं अख़्तियार इदारो टूल्स ऐं महरापुर नईं मोटरसाइकिल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद आटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद आटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एशियंट एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और टीम फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, फिजिक्स और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर हुसैन मेमन, मैट मजर स्कूल सिस्टम 0300-2723-4, अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।

सुन रहे हैं GFM 88 सिंध की आवाज। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ वहाँ तक के तमाम दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि आप सुनिए और सुनते रहिए सिर्फ अशफाक को GFM 88 सिंध की आवाज। अरे जना 25 सितंबर की ये खूबसूरत सी शाम सिर्फ और सिर्फ है आपके नाम। दिन भर की मसरूफियात, काम, पढ़ाई, सफर और जिम्मेदारियों के बाद अब थोड़ा सा वक्त है रिलैक्स करने का, कुछ अच्छी बातें सुनने का, अच्छी मौसीकी का और अपने दिलो दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करने का। तो जनाब जरा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, जरा सा नहीं बल्कि बहुत सारा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बात करेंगे जिंदगी की, नौजवानों की, दोस्तों साथ साथ एंटरटेनमेंट की। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को खूबसूरत बन सभी वही बातें करेंगे जो आपको आती हैं। और जनाब जब पसंद आती हैं तो आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का इजाफा हो जाता है, मजा आ जाता है आपकी जिंदगी में और आप चिल करते हैं। अरे जनाब जिंदगी में चिल ही करना चाहिए, क्योंकि जनाब हम अक्सर अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल बना लेते हैं। हाय हाय हाय, हम हर चीज को परफेक्ट देखना चाहते हैं, हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट घर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट जिंदगी। लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि जिंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये बात तो आप सभी लोगों को जान लेनी चाहिए कि जिंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होती। कभी मौसम हमारे हिसाब से नहीं होता, कभी लोग हमारी तवक्कोआत के मुताबिक नहीं होते और कभी हालात हमारे हक में नहीं होते यारा। लेकिन एक चीज हमारे इख्तियार में जरूर होती है, हम इन हालात को किस अंदाज से देखते हैं। अरे जनाब अगर मसला आया है तो इसे अपनी पूरी जिंदगी ना बनाए, सर पे सवार ना करें उस मसले को यार। अगर आज बुरा दिन है तो उसका मतलब ये नहीं कि कल भी बुरा ही होगा। अरे जनाब कल अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप नाकाम इंसान हैं। अरे जनाब ये किस्मत पे लिखा था और कुछ हमारे जो है नाकामियां और या कुछ खामियां ऐसी थी जिनकी वजह से हमें ये नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कल हम उन्हीं नाकामियों से, उन्हीं चीजों से सबक सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और फिर कामयाब हो जाएंगे। अरे जनाब कभी कभी जिंदगी हमें रोक रही होती है ताकि हम अपनी डायरेक्शन बदल सकें, इसीलिए खुद पर काम करते रहें, अपनी सोच बेहतर करें, अपनी स्किल्स बेहतर करें, अपनी जबान, अपना रवैया और अपना किरदार बहुत ज्यादा बेहतर करें। क्योंकि इंसान की असल खूबसूरती उसके चेहरे से ज्यादा उसके अखलाक और किरदार में होती है। तो जनाब अगर आप हमारी बातों पर अमल करेंगे तो यकीन जानिए आप एक कामयाब, अच्छे और जबरदस्त इंसान होने में अपना भी किरदार डालेंगे, अपना भी अपने एफर्ट्स डालेंगे और कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीजों को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके, अपनी जिंदगी में शामिल करके आप अच्छे इंसान और हम सब अच्छे इंसान कहलाने के लायक हो जाए। तो मेरे बहुत से और तहसीन है वो लोग जो कि सब मुझे सुन रहे हैं और बहुत परफेक्ट लोग जो है जो समझ रहे हैं कि हम परफेक्शन की जानिब जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ये सब चीजें लाइफ में डालकर हम परफेक्शन की जानिब जा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी सुन, क्योंकि मैं 5 से 7 बजे तक आप लोगों के साथ हूँ। खैर जनाब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 5 से 7 यानी कि 2 घंटे बात होता है 0001-3488 पर। नंबर एक बार फिर से 888 आप हमें जाइए, मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए 888 पर। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है जनाब GFM88 आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हमें वहां पे जाके अपने मैसेजेस प्यारे प्यारे से कर सकते हैं, डेडिकेशन भी दे सकते हैं किसी को भी देनी हो तो। खैर जनाब आपका अपना अशफाक शो का स्टार्ट देता हूँ एक बहुत प्यारा से गाने इस वक्त मेरे पास मौजूद है। वो प्यारा सा गाना अखड़ियों है जनाब दिलबर जलाल चांडियो और इत्तेहाद बैंड का जनाब प्ले कर चुका हूँ। तो आप इस गाने को सुनिए, सुनते रहिए जी एफएम। आई लव यू ऑल विद अशफाक अज़ीज़। शाम के 5 से 7 तक हम और आप साथ साथ हैं।

0: वेलकम बैक ट्रिब्यूट टू जलाल चांडियो। बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाधों की नजर किया। ए नख तू अखणियो ये राज पत्नी क्या होगा आगे में आगे आगे पता नहीं क्या था। एनीवे खैर आपका अपना शफाक आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। हम लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन चैन पे कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब इरफान थे वो आई थिंक पहली कॉल पर आ चुके हैं हमारे साथ। क्या लक है आपका इरफान
1: भाई।
0: क्या बात है क्या बात है जबरदस्त। और फिर बाकी जो है लिस्टर को क्या तालियां बजाते रहेंगे
1: यार, हमें भी सुनने ना।
0: आपको सुनते रहते हैं हम आपको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं।
1: बर्दाश्त करें ना यार, आप बर्दाश्त करेंगे लोग भी बर्दाश्त करेंगे।
0: हम आपसे बिल्कुल
1: खफा होंगे तो लोग तो पहले ही खफा है मुझसे।
0: नहीं भाई नहीं, हम आपसे बिल्कुल खफा नहीं होते, बल्कि हम आपसे क्या, हम किसी से भी खफा नहीं होते हैं। हम सारे दोस्त हैं, मतलब आप जितने भी लिस्टर्स हैं ना मेरे लिए काबिल एहतराम है। हाँ क्यों यार क्या हो गया, मैंने कभी आपको कुछ कहा?
1: सोचना पड़ेगा।
0: हाँ देख लें देख लें। और इरफान बताइए हाल चाल कैसे हैं आपके और क्या हो रहा है जिंदगी में?
1: पसीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक है।
0: अच्छा पसीना तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि इस वक्त 39 सेंटीग्रेड चल रहा है शक्कर का टेम्परेचर।
1: अच्छा भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन मैं भूल जाता हूँ, पता है आपको?
0: तो बहुत अच्छी बात है कि आप भूल जाते
1: हैं। पिछली बार आपने 11 सेक्शन पर पे शो किया
0: जी
1: और मेरी 12 सेक्शन पर पे बस थी।
0: ओए होए मैं भूल गए होंगे क्या?
1: अपने आपको आपको चोर कह कह के चला गया तेरा।
0: आप जमाने के पीछे लग गए और अपनी सारी बातें भूल गए।
1: अपने आपको भूल दिया तो वो भी भूल गया।
0: चलिए कोई बात नहीं, लेट आए कोई मसला नहीं। आपकी 11 सितंबर या 12 सितंबर को बर्थडे थी तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू इरफान अली थेबू। हमारी तरफ से हमारे तमाम लिसनर की तरफ से आप हजारों साल जिए और हमेशा आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आए
1: इंशाल्लाह। अब लिसनर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगली बार अशफाक भाई खुद याद ना करे तो फिर जुर्माना ऊपर लगेगा।
0: मुझे अपनी नहीं याद रहती, मैं आपकी क्या याद रखूंगा। मेरी मिसेज को हमेशा शिकायत रहती है हमारी बर्थडे भूल जाते हो तुम लोग। बिल्कुल
1: अशफाक भाई जी, आज थोड़ा सा जो स्पीकरों का वॉइस है ना जो लेवल है वो मुझे ठीक नहीं लग रही है कि एक सखर की।
0: अच्छा क्यों, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, आपकी तरफ वॉइस सही नहीं आ रही है क्या?
1: आपका जो टोन चला था वो भी थोड़ा सा स्पीकर साफ नहीं थे और पहले ये मैं दूसरी स्टेशनों में देखता था कंप्लेन करता था लेकिन अब हमारी स्टेशन सखर में भी ये हो रहा है।
0: अच्छा चलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अब तक क्लीन एंड क्लियर वॉइस पहुँचे।
1: ये जो लेवल होती है ना आवाज वाली स्पीकरों की ये शायद बढ़ गई है या कोई टेक्निकल।
0: ओके लेट्स सी लेट्स सी, मैं चेक करता हूँ और बताइए
1: हो गए हैं ना शायद इसी का 2012-13 से चल रहे हैं।
0: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज एकदम से ऑसम है, बस थोड़ा सा लेवल का कभी कभी प्रॉब्लम में भी हो जाता है मुझसे। तो अच्छा ये
1: मैंने मजाक की।
0: नहीं नहीं इट्स ओके यार, आप कह सकते हैं बातें कर सकते हैं बातें मुझसे,
1: हमारा स्टेशन है तो हम नहीं कहेंगे तो
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा इरफान ये बताओ कि अगर कभी तुम्हें किसी सिंगर के साथ बैठने का मौका मिले और कोई सॉन्ग उनसे सुनने का मौका मिले बराह रास्त, तो तुम किस सिंगर के साथ, तुम्हारी ख्वाहिश है कि मुझे मिले और मैं उसे इस गाने की फरमाइश करूं?
1: बाबर भाई मेरा पसंद
0: अशफाक भाई
1: सिंगर अहमद मुगल है। हाँ सॉरी
0: मैं
1: भूल गया, लेकिन एक बात थी अशफाक भाई
0: जी जी
1: जो मेरे ज़हन में थी, मैं कहने वाला था कि मैंने कहा पहले मैं सिंगर का नाम लूँ फिर आपको बताता हूँ, इसलिए बाबर भाई आ गया।
0: अच्छा बाबर भाई सिंगर है।
1: बाबर भाई के शो में मैं कॉल करता था ना और उसको कहता था कि आप अहमद मुगल सुनाए, तो वो मुझे कहता था ये ऐसे सॉन्ग ना सुने, फिर वो मुझे कहता था इरफान
0: बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री।
1: अच्छा भाई मैं जब सोचा था तो म्यूजिक से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, मैं नाते और नोए थोड़े से सुनता था लेकिन और म्यूजिक नहीं सुनता था, जब मैंने अहमद मुगल सुना ना
0: जी जी
1: तो फिर मुझे बहुत म्यूजिक से प्यार हो गया। और अशफाक भाई अहमद मुगल आप सुने ना जिस भी,
0: अरे मेरे फेवरेट सिंगर है वो यार
1: बिल्कुल, और हाँ। जिस सिंगर ने सॉन्ग सिंगिंग में आया है जो भी जिसने भी गाया है
0: हाँ।
1: उसने पहला सॉन्ग अच्छा नहीं गाया।
0: अच्छा लेकिन अहमद मुगल के बहुत सारे ट्रैक हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हिंद रात जी अंधेरे में सनम,
1: आप मेरी पसंद का सॉन्ग
0: शहर है बेकदरन जो
1: बिल्कुल आप मेरी पसंद का सॉन्ग चलाएं, अहमद मुगल का पहला सॉन्ग है जो पहला उसने गाया था
0: अनमोला जानिया के, ये भी बहुत प्यारा गाना है।
1: ये भी नहीं छदे वे जिए तो सिटी विवारा माया मुझे चप्पन पे दुआ सुबुशा।
0: अच्छा तो आपको अब गाना कौन सा सुनना है वो बताएं?
1: यही सुनना है कि अहमद मुगल का जिंदगी का पहला सॉन्ग ये है
0: छदे वे
1: जिए तू सिटी विवारा मा।
0: ओके मैं प्ले करने की पूरा कोशिश करता हूँ।
1: अब आप सुने इसकी इश्ताक भाई टून, इसकी जो म्यूजिक होती है ना
0: हाँ?
1: कितनी साफ है जैसे कोई पुराना सिंगर है सदियों से गा रहा है, लेकिन इसका पहला सॉन्ग है।
0: अच्छा, क्या बात है। अहमद मुगल बहुत वर्सटाइल हैं और बहुत अच्छे हैं।
1: हाँ, उसने सकाफत के भी बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: जो भी सॉन्ग गाता है वो बहुत अच्छा गाता है। मैं कहता हूँ कि कभी उसमें खराब कोई भी सॉन्ग नहीं गाया।
0: बिल्कुल नहीं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, उनकी आवाज बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब शहर में मुब्तला कर देती है उनकी आवाज। मुझे बहुत पसंद है।
1: आजकल की म्यूजिक चल रही है अशरफ भाई, कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं।
0: अच्छा, उनका गाना थोड़ा सा मुझे बताए ना, कौन सा वाला है जो आप सुनना चाह रहे हैं? छड़े वे जिनके तू या जानिब छड़े वे जिए तू। अच्छा जी,
1: लिखे आप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा।
0: चले ठीक है, इंशाल्लाह।
1: सदे में जिए तो फिटी भी आराम, या मुझे चपन पे दुआ से पूछा मा।
0: चले चले चले, सही सही। किसके नाम करना चाहते हैं?
1: सबसे पहले बहुत दुखी सॉन्ग आपके नाम करूंगा।
0: कोई मसला नहीं, सही।
1: और उसके बाद कुछ दोस्त हैं, सिस्टर मिसेस अली और सिस्टर दुआ खान, फौजिया फरजाना राय कुमर, ममता कुमर, हुसैन बख्तर, हाफिज गुलाम अहमद सांबल, नजीर मंगरियो, बच्चन चंबानी, लुकमान चाचर, अब्दुल्ला बंगवार और जो भी सुन रहे हैं
0: जी जी,
1: सबको इरफान अली चेबो की तरफ से बहुत सारे सलाम और हुसैन बख्तर को भी बहुत सारे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना जानी।
1: थैंक यू,
0: ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ इरफान अली थेबो जनाब, और अब सेकंड कॉल लेने का टाइम आया चाहता है। हम लेंगे अपने शो की एक और कॉल लेंगे। हम आपका नंबर आपके गोश गुजार करते चले, 03000113488 हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जनाब, अब 4 मिनट बाकी हैं, तो मैं क्यों ना ले लूं एक गाना का ब्रेक जो इरफान अली थेबो ने किया है, गाने की फरमाइश, ताकि गाना भी चल जाए, ब्रेक भी चल जाए और आपकी नेक्स्ट टाइम वापस आके आपकी कॉल्स भी ले ली जाए। तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। अब जो मैंने गाना चलाया, पता नहीं वो वही है कि नहीं है, लेकिन चला लिया मैंने।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शांत

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी जे क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे आचर सूमर ते सुबह 5 बजे ताई।

0: पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज, पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज, थरी रोड, मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-32-95-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: मलाई त गर्न चाहियो अनि केडो गानो बुझाउन चाहियो अच्छा सॉरी वरी बुझायो मुझे
1: मुझे सुहारी सिंध ते जीतो सिंधो भरे
0: मुझे सुहारी सिंध ते ओके आया गोलियों था इरफान।

शमन जो गानो अदे चयो आहे सिकंदर भा, त कंहिंजे नाले तव्हां करणु चाहियो था? जी जी, कंहिंजे नाले करणु चाहियो? जी जी, जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जवार जवार भा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ है जवार भाई, और जवार भाई को हम सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना, मुझे सुहारी संदते। इस गाने को सुनिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए।

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing, 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se. अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू हैं.
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो जी एफ एम 94.

0: जी
1: जी जे 70 में विंदा उन्हनि खे मुंहिंजी तरफ़ां इलाही सारो सलाम कर सभई आबाद हूंदा डॉक्टर गुलाम जी पवंदा
0: जी जी जी अली हसन बाबू भी असांजो रेगुलर लिसनर आहे ऐं असांखे कॉल अॼुकल्ह नथो करे अलाए छो पर सभिनी खे सलाम थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भंगवार साहब पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखो थैंक यू सो मच थैंक यू जी जनाब अब्दुल्ला भंगवार साहब कह रहे थे कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और जबरदस्त तरीके से जो है हवा भी चल रही है तो जनाब सर्दी की आमद आमद तो है ना तो हम चाहते हैं कि जल्दी से सर्दियां आ जाए ताकि गर्मियां भाग जाए अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब केर असन सबली सागर
2: सजन चाचड़ तो गलाना थे
0: सजन चाचड़ छा हाल है सजन भाजो
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास सजन भाई केड़े शहर का कॉल किया था मुखे सजन भाई ताजी आवाज कटजे थी तमा केड़े शहर का कॉल किया मुखा मुखे केड़ी जगह हां हां सजन भाई
2: वो असज घर में क्या है
0: हां हां केड़ी केड़ी बधायो कंहिंजो गानो आहे सॉरी
2: नूरबानो
0: ओके नूरबानो मां

मियामा गुजारे वेंदासीं। अब्दुल्ला भंगवार साहब जी इलाही फरमाइश ते छो त लास्ट टाइम हुन जी फरमाइश पूरी कोन कई से, हाणे तव्हां इहो गानो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? ठीकु थैंक यू सागर भाई, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, असां सां गॾु ईंदा रहिया करो। थैंक यू। हमारे साथ है जनाब अब्दुल्ला, और सॉरी अब्दुल्ला भंगवार की फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ है सागर भाई, बहुत ही सुरीले से सागर भाई। अब हम प्ले करते हैं आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना, जदी हमें दुनिया में गुजारे विंदासे। सुनिए सुनते रहिए GFM88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी। इसके बाद है ब्रेक, ब्रेक के बाद एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे आपके साथ आपके अपने शो में। हमारे साथ रहिएगा।

वफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। सुध समाव वारे वफाकी वज़ीर ताला तरण चयो आहे त पीटीआई वारा बुज़िल आहिनि, जंहिं सबबि हुननि लॉन्ग मार्च मुलतवी कयो आहे। हुननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जे सहूलतकार ऐं टीटीपी जी ॿी टीम आहे। केपी जो वॾो वज़ीर, सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। पीटीआई जो

सेप्टेंबर ते इस्लामाबाद ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुलतवी करण जो फैसलो पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पेशावर में अहम इजलास लॉन्ग मार्च की तैयारियों हिकमत अमली जो जायजो वरतो वो जरियन जो चवण है महमूद खान अचकसई अलावा नासिर अब्बास के एतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो के पी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी चयो है लॉन्ग मार्च लाइ तैयारियों मुकम्मल आइन पोइते न हटंदासीं।

इस्लामाबाद ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखे बंद कर केपीआई पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअतल अटक पुल के लोही कोका कंटेनर्स रखी मुकम्मल तौर बंद कर पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया वह मुख्तलिफ रोड के बंद कर वो पीटीआई डी बिन में लॉन्ग मार्च खत्म करण वाली है। केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली ना है। पीटीआई वारा पान गिरफ्तारियों दे रहा है। केपी हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बनाना चाहे थी।

0: न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ए तुर्किया के परेही वजीर विच में मुलाकात बाद टिन्ही मुल्क के आला फौजी सरबराहन जो इजलास सऊदी अरब में तलब सऊदी शहरों से हमलन बाद पैदा थियल सूरत हाल हिकमत अमली से गौर किया सऊदी परेही वजारत मूजिब टिन्ही मुल्क जहा फौजी अमलदार दिफाई मुहिदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारन तरीकन से गौर कंदा टिन्ही मुल्क के परेही वजीर खिते में जथादार अमन लाय कोशिशों जारी रखने भी इतफाक किया
1: When did you join our army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis.
3: आप सुन रहे थे. GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो पहिरियों कदम वधायो
5: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100
7: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372-0242460100।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर आई गोश्त बधाए अम्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार आई जानवरन जे डॉक्टरन वक्त दस्तियाब आहे।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।

ऐं अव्हां सभु ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। जीअं त लिसनर्स, अल्लाह पाक जूं हज़ारे नेमतूं असां वटि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां सभु खां वॾी नेमत सिहत आहे। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी, तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। सभु खां पहिरीं त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? तबियत सां ठीकु आहे
1: जी? साईं अलाह ताला जा सां।

0: ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੱਸ
1: ਔਜ਼ ਬਿਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਉਹ ਰੱਬ ਪਾਕ ਜੂੰ ਜੇਕੋ ਅਸਾਂਖੇ ਜਾਰੇ ਥੋ ਖਾਰਾਏ ਥੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਥੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਥੋ ਸਭਿਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਸਮਾਨੀ ਆਫ਼ਤੁਨ ਖਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਥੋ। असल प्रोग्राम सेहत की गाल जो बर वक्त इन टाइम त नशर थी हजारे बुधंदड़ तवाज वो है जो हर कैंजी उम्मीद बणबी है उम्मीद यहाँ होंगी है त शिफा तो अलह ही है जाहिर है लेकिन उम्मीद यहाँ होंगी है त कान का बीमारी जी भी है अल्लाह तला जो भी मर्ज़ तख्लीक़ है त मौत के अलावा उनको इलाज ज़रूर मौजूद है ख़ास कर होम्योपैथिक में बगैर इंजेक्शन के बगैर ड्रिप के बगैर सर्जरी के ट्रीटमेंट होम्योपैथिक दवाओं रस्ते बगैर कें साइड इफेक्ट के मौजूद होंगी है। सो अवे शहर मेहरापुर शहर में जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अवे खबर है त हफ्ते जहाँ छह डी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधण पोटा पेट्रोल पंप ते क्लिनिक मौजूद होंगी है जी टाइमिंग सुबह जो 10 बजे का शाम जो 5 बजे तीन होंदन। अड़े तरीके से हफ्ते जहाँ छह डी जुमो छंछर आचर सूमर अरबा खमीस अंगारो स्पेशली क्लिनिक बंद होंगी है स्पेशली इनमें टे डी जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी असो चेकअप फीस फ्री होंद है जो मुस्तहकिन हूँ उनमें हजारे मुस्तहकिन इन मल तायद वी चुका है। अड़े तरीके से अलबत् दवा मरीज के पान वी होंगी है असो जी क्लिनिक जी भी पेशेंट इंदा अलहमदुल्ला इन मल तय समझो 90% पेशेंट ठीक थी चुका है जी मैं पैं गाल कई त शिफा अल्लाह ताला जे हथ में है को भी डॉक्टर जो है सो फरिश्तो ना है अल्लाह ताला जैसे शिफा दींदो है तो उतां उनके शिफा मिलंदी है चाहे वो हकीम हुए एलियोपैथिक डॉक्टर हुए या होम्योपैथिक डॉक्टर हुए या आम मानू ही छो ना हुए लेकिन जैसे शिफा अल्लाह ताला जिते जै शे में रखी है जो कख में भी शिफा होंगी है तो उनमें भी शिफा मिली वेंदी है खास कर असो जो जड़ी बूटियों हैं असो होम्योपैथिक दवाओं जो राज भी यही है जी भी असो होम्योपैथिक दवाओं हैं वो जड़ी बूटियों में ही तैयार थन्दू इन में को भी केमिकल इस्तेमाल यूज न थन्दो है जैसे कर मरीज के को भी साइड इफेक्ट न थन्दो है अलबत् उनके फर्क पैजी वो है पर जैसे फायदो न पवन है तो नुकसान भी को असा कोशिश कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम सेहत जी ॻाल्हि जे तवसुत सां त जेके बि आम मर्ज़ या ख़ासि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में अवां ॿुधंदड़नि ताईं सामाइन ताईं हिकु ॼाण पहुचाईंदा आहियूं इहा बीमारी जेको आहे सो छो थींदी आहे या थी वञे त उन जे लाइ फस्ट एड जेको आहे सो अव्हांखे छा करणु खपे या जेको आहे सो उन जे लाइ परहेज़ कहिड़ी करणु खपे या उन जे लाइ दवा कीअं इस्तेमालु करणु खपे कहिड़ी इस्तेमालु करणु खपे। मर्ज़ जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त हज़ारे मर्ज़ हूंदा आहिनि हज़ारे मर्ज़नि जे बारे में हिन महिल ताईं प्रोग्राम करे चुको आहियां हिकु हिकु मर्ज़ जे बारे में 100 दफ़ा जेको असां पंहिंजे पेशंट्स खे आगाही ॾेई चुका आहियूं वरी बि हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह जोड़नि जो मर्ज़ आम थी चुको आहे जोड़नि जो मर्ज़ हॾनि जो मर्ज़ आम आहे इहो छो थींदो आहे उन जा हज़ारे जेको आहे सो यानी तव्हांखे जिते बि वेंदो त हज़ारे क़िस्म जूं दवाऊं मिलंदियूं हज़ारे क़िस्म जा जेको आहे सो इलाज मिलंदा के गोॾनि में सुयूं हणाईंदा आहिनि वीचारा के जेको आहे सो मालिशूं कराईंदा आहिनि के लेप ॾियारींदा आहिनि के टकोरूं ॾियारींदा आहिनि के सिकायूं ॾियारींदा आहिनि। सो जेको इलाज होम्योपैथिक में अवांखे ॿुधाईंदा आहियूं दवाउनि जे रस्ते उन सां जेको आहे सो पेशंट 100% माशाला ठीकु थी वेंदो आहे। हाँ ये थींदो आहे असां वटि उहे पेशेंट जेकॾहिं हिन महिल ताईं कुझु पेशेंट अहिड़ा बि आहिनि जेके ठीकु न थी सघिया आहिनि उन्हनि जा असबाब इहे आहिनि त उहे ऑलरेडी पहिरियां ई जेको आहे सो कंहिं लॉन्ग टाइम जे लाइ काफ़ी लंबे अरसे ताईं मिसाल अंग्रेज़ी दवाऊं जंहिंखे असां कार्टिज़ोन चवंदा आहियूं उहे इस्तेमालु करे चुका हूंदा आहिनि पोइ ज़ाहिरी आहे त उन में होम्योपैथिक दवा जेको आहे सो नाकारा बणिजी वञे थी छो जो उहे अॻे ई जेको आहे सो हू अहिड़ो हिकिड़े क़िस्म जो जीअं असां उनखे सिंधी में चवंदा आहियूं मिठो ज़हर कार्टिज़ोन उहो हिकिड़ो मिठो ज़हर आहे जेको हर यानी अहिड़नि मर्ज़नि में जीअं दमे जो पेशंट हूंदो आहे उन में बि कार्टिज़ोन इस्तेमालु कई वञे थी पोइ हिकु दफ़ो पेशंट हिरी त वञे थो लेकिन उन मल जल्दी क्विक उनके रिलीफ मिले तो फर्क पवे तो लेकिन अगते हली उन काफ़ी मसायल अगते हली जैसे उम्र उनकी मर्ज जैसे तो उनके को भी दवा असर न कंदी आहे चाहे वो दमे जो मरीज़ हुजे चाहे वो जोड़न जी तकलीफ़ जो मरीज़ हुजे चाहे रगुन जी तकलीफ़ जो मरीज़ हुजे या कें भी अड़ी बीमारी जो मरीज़ हुजे। जोड़न के हवाले से गाल कयूं तो जोड़न जे सूर लाइ तमाम आम तौर ते इहो ई मशहूर हूंदो आहे त ही एक दफ़ो थी वियो त वरी कोन छॾींदो आहे लेकिन इहे हरगिज़ न हूंदो आहे। होम्योपैथिक इनखे मुमकिन कयो आहे ऐं पहिरियां बि मरीज़ जी सुञाणप कजे त जोड़नि जा सूर जंहिं मां पहिरीं ॿुधायमि त कई क़िस्म जा हूंदा आहिनि सभिनी जो इलाजु पंहिंजी हिकमत अमली सां कयो वेंदो आहे ऐं तव्हांखे जोड़नि जे सूर में ईअं थींदो आहे जो घणनि खे सोजन थींदी आहे अकड़ाव थींदो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो जेको आहे सो खोड़ सारा डॉक्टरनि जी मां पहिरीं ॻाल्हि कई ईंदा आहिनि त जीअं इंजेक्शन्स इस्तेमालु थींदियूं आहिनि कार्टिज़ोन इस्तेमालु थींदियूं आहिनि लेकिन जेको आहे सो मर्ज़ तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे सोजन वधी वेंदी आहे। थींदो ईअं आहे जो उहो जेको अंदरि असांजे हा जेके जोड़नि जा जेके हॾ हूंदा आहिनि हॾनि में या जेके बि असांजा ई गोॾा हूंदा आहिनि उन्हनि जे विच में हिकिड़ो लिक्विड हूंदो आहे जेकी जंहिंखे असां मिख चवंदा आहियूं या सिमेंट फ्लूइड जेके असां इंग्लिश में चवंदा आहियूं उहा हूंदी आहे। जॾहिं उहा घटिजी वेंदी आहे त पोइ उनमें जेको आहे सो उहो गैप ख़तमु थींदो आहे ऐं पोइ जेको आहे सो गोॾा पाण में टकराइणु शुरू कंदा आहिनि ऐं पोइ उहे कॉटिलेज जेको आहे सो उनमें थी वेंदी आहे। यानी हीअ हिकिड़ी मेडिकल लैंग्वेज आहे लेकिन जेके ॿुधंदड़ आहिनि सम्झंदड़ आहिनि ऐं जेके वठंदड़ आहिनि उहे उनखे बख़ूबी सम्झंदा हूंदा त कॉटिलेज छा आहे या तकलीफ़ कहिड़े क़िस्म जी आहे मॉलिश थींदी आहे त छा थींदो आहे या कैल्शियम जी कमी थी वेंदी आहे विटामिन डी डेफिशंसी थी वेंदी आहे त पोइ छा थींदो आहे त इन्हनि शयुनि जूं जॾहिं इन्हनि में कमियूं थी वेंदियूं आहिनि त मरीज़ जेको आहे सो उहो अॻिते हली जेको घणी कश्मकश में अची वेंदो आहे। जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त ऑस्टियोआर्थराइटिस जी बीमारी थी वेंदी आहे ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो कॉटिलेजिस जेको आहे सो पाण में थी वेंदा आहिनि ऐं जोड़नि जी उहा बीमारी जेका हिकु हॾीअ खां ॿी हॾीअ खे अची भञणु लॻे जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त उनखे कॉटेज चइबो आहे। असांजी हॾियुनि जे विच में बि जीअं बि मिसाल ॻाल्हि कई मिख थींदी आहे उहा घटिजी वेंदी आहे पोइ पाण में हॾियूं जेके बि हूंदियूं आहिनि उहे पाण में टकराइबियूं आहिनि ऐं अॻिते हली उहे भुरण लॻंदियूं आहिनि ऐं उहे टेड़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। इहो सॼो जेको आहे सो सिस्टम ईअं हूंदो आहे हिकिड़ो जेको पाण मुरादो माण्हू मेडिसिन्स खाईंदो आहे या अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं दवाऊं इस्तेमालु कंदो आहे जंहिंजे करे जेको आहे सो इहे मसाइल थी वेंदा आहिनि। लेकिन होम्योपैथिक में अलाह ताला जी महिरबानी सां असां वटि तमामु हिकिड़ी बहितरीन ट्रीटमेंट मौजूदु हूंदी आहे जेकी मरीज़ खे ॾींदा आहियूं कुझु टाइम ताईं उहो इस्तेमालु उनखे करणी हूंदी आहे उन सां उहो उनजो बग़ैर इंजेक्शन जे उनजो सूर बि घटिजी वेंदो आहे ऐं उनजी सोजन बि घटिजी वेंदी आहे ऐं उनजी जेकी मिख जी कमी हूंदी आहे उहा बि पूरी थींदी वेंदी आहे। अच्छा सूर इहो त मां ॿुधायमि त इनमें इनजो इलाजु छा आहे या इनजो थींदो आहे या न थींदो आहे। एक्चुअली उनजी सुञाणप बि तव्हांखे मां ॿुधायमि जॾहिं सूर थी वेंदो आहे त इहो मिख घटिजी वेंदी आहे सोजन थी वेंदी आहे। जेकॾहिं उनमें सूर शिदत सां थी वेंदो आहे बुखार बि घणनि खे रहणु लॻंदो आहे माण्हू डिप्रेशन में अची वेंदो आहे अॻिते हली इन में यूरिक एसिड बि जिस्म इंसानी जिस्म जो जेको यूरिक एसिड हूंदो आहे उहो बि वधी वेंदो आहे अमूमन 7 ताईं उनजी रेंज हूंदी आहे जेको नॉर्मल हूंदो आहे पर जॾहिं यूरिक एसिड फीमेल में 6 ताईं हूंदो आहे मर्दनि में 7 ताईं हूंदो आहे पर जॾहिं उहो उन रेंज खां वधी वेंदा आहिनि त उन सां गॾोगॾु उनजे करे उनखे यानी हॾनि में तकलीफ़ वधी वेंदी आहे जोड़नि में सूर तमामु घणो वधी वेंदो आहे सोजन बि घणी थी वेंदी आहे ऐं अॻिते हली जेको आहे सो पेशेंट जो बी पी बि हाई थियणु लॻंदो आहे ऐं गुर्दा बि गुर्दनि ते बि असरु थियणु लॻंदो आहे गुर्दा अॻिते हली ईअं बि थियो आहे जो गुर्दा बि फेल थी वेंदा आहिनि। इनजे करे अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ूं जेकॾहिं थियनि थियूं त महिरबानी करे हिकु त पंहिंजे मुंहुं दवाई हरगिज़ न वठो ऐं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मां इहो चवणु चाहींदुसि हिन प्लेटफॉर्म तां त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त खोड़ सारा पेशेंट असां वटां बि अहिड़ा आया जेके न ठीकु थी सघिया सिर्फ़ु उनजी वजह इहा ई हुई जो मरीज़ लेट सां आया ऐं हुननि अहिड़े क़िस्म जूं दवाऊं इस्तेमालु थियल हुयूं इन जे करे पर जेकॾहिं कुझु अरसो हुनजी दवा इस्तेमालु थियल बि आहे ऐं असां वटि बर वक़्तु अची वञे थो ऐं कुझु टाइम ज़ाहिर आहे हिकिड़ो पेशेंट मरीज़ त मरीज़ हूंदो आहे असां वटि वरी उबतो सिस्टम हूंदो आहे हिकिड़ो माण्हू किथे 2 साल 5 साल 10 सालनि 15 सालनि ताईं मरीज़ इन बीमारी में तकलीफ़ में रहंदो आहे असां अमूमन पंहिंजे प्रोग्रामनि में चवंदा आहियूं त घटि में घटि 3 महीननि ताईं असांजी ट्रीटमेंट हलंदी आहे त हू मरीज़ उन खे ज़हन में रखी वेंदो आहे त टिनि महीननि में पेशंट बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे लेकिन थींदो इहो आहे असां चवंदा घटि में घटि टे महीना पेशंट ट्रीटमेंट वठे त उन सां उनजी जेको आहे सो जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे त काफ़ी हद ताईं घटिजी वेंदी आहे ऐं आहिस्ते आहिस्ते जेकी नुक़्स हूंदो आहे उहो बि ख़तमु थींदो आहे ख़तमु थींदो वेंदो आहे उन में टाइम लॻंदो आहे पोइ चाहे जेकॾहिं को अहिड़ो नुक़्स वधी वेंदो आहे अहिड़ी का बीमारी घणी आहे त जेकॾहिं टे महीना न त पंजनि महीननि ताईं छहनि महीननि ताईं बि ट्रीटमेंट हुनजी हलंदी आहे सो इहे ॻाल्हियूं नंढियूं नंढियूं हूंदियूं आहिनि जेकी असांजे प्रोग्राम जे तवसुर सां करणु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं के ईअं हूंदा आहिनि दोस्त जेके फ़ोन करे ॿुधाईंदा आहिनि त असां दवा वरितीसीं ऐं दवा मां जेको आहे सो असांखे हीअं थियो त दवा मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई त असांजी दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट न आहे हा उहे पेशंट जेके दवा खे सही इस्तेमालु न कंदा रेगुलरली इस्तेमालु न कंदा त उन्हनि खे फ़र्क़ु दवा न ॾींदी आहे असां चयोसीं टे महीना या चार महीना दवा इस्तेमालु उनजो इहो मक़सदु न आहे त तव्हां कुल ई महीने में हिकिड़ो दफ़ो दवा वठी वियो ऐं वरी चार महीना आयो त तव्हां चार महीना दवा खाधी पर जेकॾहिं असां ॾहनि ॾींहनि जी दवा ॾिनीसीं उनखे तव्हां रेगुलरली छहनि महीननि ताईं दवा यूज़ कई त उनखे चइबो आहे टे चार महीना दवा वठणु पाणी जेकी दवा हूंदी आहे थधे पाणी में इस्तेमालु न करणी हूंदी आहे दवा जा मख़सूस डोज़ हूंदा आहिनि हर दवा अलॻि अलॻि पाणी में पीअणी हूंदी आहे ॾह ॾह फुड़ा पीअणा हूंदा आहिनि इहा हिकिड़ा सिगरेट पीबो आहे त सिगरेट खां जेको आहे सो 15 मिंट अॻे दवा पीबी आहे गुरड़ी करे पोइ जेको आहे दवा पीबी आहे दवा पी यकदमि सिगरेट न आहे पीअणो हूंदो वरी गुरड़ी करे पोइ 10-15 मिंट खां पोइ सिगरेट पीबो आहे त इहे हिकिड़ा दवा जा क़वानीन कानून हूंदा आहिनि दवा जो तरीक़ेकार आहे जेकॾहिं इन तरीक़े सां केरु दवा खे इस्तेमालु न कंदो आहे त पोइ जेको आहे सो दवा नाकारा थी वेंदी आहे ऐं दवा जो को असरु न रहंदो आहे सो इहे नंढड़ियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हुयूं जेके असां पंहिंजे ऐं नंढड़ी हिकिड़ी सम्झाणी हुई ऐं नंढड़ी हिकिड़ी ॼाण हुई जेके असां पंहिंजे ॿुधण ताईं पहुचाईसीं उमेदु आहे त अॼोको प्रोग्राम जो मौज़ू अवां सभिनी खे ज़रूरु जेको आहे सो पसंदि आयो हूंदो इन प्रोग्राम जे मुतालिक़ महिरबानी करे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु इहो ॻाल्हि नोट कंदा त हिन प्रोग्राम जे मुतालिक़ जेको बि रियल हक़ीक़ी को पेशंट आहे केस आहे त उहो उन बारे में ज़रूरु सुवाल पुछंदा अजायो पेशंट जेको बि आहे अजायो जेको बि शौक़ीन आहे उहो ईअं महिरबानी करे हिन प्रोग्राम में कॉल न करे त बहितरु आहे जो ॿिए जेको ज़रूरतमंद आहे उनजो टाइम बि वेस्ट थिए थो ऐं असांजे प्रोग्राम जो बि टाइम वेस्ट थींदो आहे वॾी महिरबानी
2: तमामु बहितरीन माशाल्लाह सर तव्हां हिकु बहितरीन ॼाण ॾिनी ऐं असां अबा सभु ज़रिए कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था असांजे प्रोग्राम में ऐं असांजे प्रोग्राम जो लाइव कॉल नंबर आहे 0301-9196-51 डॉक्टर साहबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु कुन रग जो सूरु नक कन गलो पुराणलो नज़ो नज़लो निचूं मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहणु कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फाल जी खंघि टीबी मैदे जो सूरु मैदे जी अल्सर तिली जो वधणु जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी रंग ख़ारिश चेहरे जी ख़ारिश फट फुरणियूं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि में जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि ऐं अव्हां सभु प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-51 0301-219-6851 डॉक्टर साहब अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटरी रोड में रापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-51 हिन ते अवां कॉल करे कंहिं बि मौज़ू बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था।

सरकालनि जो सिलसिलो जारी थी चुको आहे, लेकिन इन खां पहिरियां ब्रेक वठंदासीं। हाणे वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94 महिरापुर।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी।
2: आई अदी, अज त डाडी खुश पई नजर अची।
3: छो न खुश थिया अदी, जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे, ऐ हाणे पैसा भी ईणा था अचन। ही दिस सोनियो चूड़ियो
2: मां भी वही चवान के ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए।
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
0: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
7: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752642 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अवा सभी बुधंदन के खुश आमदी चूं था। प्रोग्राम आए सेहत की गाल असाने स्टूडियो में मौजूद आज डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमुण साहब जी मुख्तलिफ़ बीमार बाबत जान दींदा जिन में गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा असाने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाने लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851 0301-9196-851।

डॉक्टर साहब, हर वाह खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोंटरी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आन। अंगारे जी डी क्लिनिक बंद हुंदी आए, इन में हफ्ते जा 3 डी जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री हुंदी आए। बाकी दवा मरीज के स्टोर तां वठणी हुंदी आए। ऐं असांजे प्रोग्राम में बेज़रिया लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301 96 8051।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, असांजे प्रोग्राम जी पहिरीं कॉल जी तरफ़। अस्सलामु अलैकुम, केरु ईंदा किथां खां? जी अजा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
1: मथे में गोरियूं थियूं आहिनि, हिकिड़ी वॾी थी आहे, पतले बि करे आहे, नरम थी वई आहे।
0: जी जी,
1: हुनजो हल
0: डॉक्टर साहब खे असां अवां रूबरू ॾेखारियो त वधीक बहितर आहे, वरना अवां खे ॿुधाए थो डॉक्टर साहब, रेडियो ॿुधो। जी सर, जी सर,
2: रूबरू ईंदो त हुनखे ॾिसी करे पोइ सही नमूने सां दवा ॾेई सघिबी, वॾी महिरबानी।
0: बिल्कुलु सर, ज़ाहिर आहे सर, साम्हूं ईंदो त हुन तरीक़े सां तव्हां मुआइनो कंदा, त ओड़े हिसाब सां तव्हां दवा ॾींदा। लाइव कॉल जो नंबर हिकु दफ़ो अवां ॿीहर अवांखे रिपीट कराईंदासीं, 0201 81 96 850।

0: डॉक्टर साहब लगे तो कॉल ड्रॉप थी चुकी है।
1: दोस्तों खे यूअर्स कंदासी तो थोड़ो बाहर निकली करे ना जिते एरिया हो जे खुलल हो जे नेटवर्क सही हो जे तो उता भी गल है।
0: बिल्कुल सर, एक बी कॉल जी तरफ नासी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अदा रेडियो सेट ऑफ कर जो।
0: रेडियो सेट अदा पैरिया बंद कर जो।
2: जी
0: जी जी। शाह पूछन चाहे डॉक्टर साहब का
2: घर पे आया
1: है। कॉल ड्रॉप कर बाबा जी, कॉल ड्रॉप कर।
0: सर असा लिसनर्स के पेरियां भी चवंदा आयो त जडे भी कॉल कियो तवा त सब का पेरियां वीडियो बंद कर
1: टाइम खराब करण होदो है। पेरियां भी चला है त कॉल जडे तवा कयो त रेडियो सेट ऑफ करे पोई कंदा के।
0: बिल्कुल सर
1: जी सर।

0: ॾेखारिया क्लिनिक बंदि हुई हा त सुभाणे सुभाणे क्लिनिक ते हूंदासीं तव्हां रूबरू ते ॾेखारे वञो
1: सर इन करे बार बार असां एड्रेस ऐं टाइम तव्हांजो रिपीट कंदा आहियूं त
0: को उहो आहे त मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई त असांजे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि ऐं मिसाल अंगारे जो ॾींहुं त साईं असां क्लिनिक ते बीठा आहियूं अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे बाक़ी टाइमिंग जे हवाले सां ॿियनि ॾींहंनि में टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां ठीकु आहे कॾहिं लेट सवेल थी वई वेंदी आहे कलाक अधु लेकिन जेको टाइम हूंदो आहे जेको ॾींहुं रखियलु हूंदो आहे उहो ॾींहुं असांजो कॾहिं बि मिस न थींदो आहे नंबर तव्हां वटि मौजूदु आहिनि पेशंट खे जेकॾहिं देरि बि थींदी आहे त को बि पेशंट असां सां टचिंग में हूंदो आहे कॉन्टेक्ट में हूंदो आहे उते बोर्ड ते नंबर लिखियलु आहे त उहो पुछी करे पोइ जेको आहे सो उते इवेट करे वेंदा आहिनि ऐं उहे दवा वठी वेंदा आहिनि इन जे करे अधे खे बि इहो ई चवंदासीं त तव्हां जेको आहे सो रूबरू ॾेखारे सघो था ऐं टाइमिंग तव्हां ज़रूरु जेको आहे सो नोट कजो ऐं ॾींहं अव्हां जे नोटेज में हुजनि
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदी आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-8051 ऐं डॉक्टर साहब जो इहो साॻियो ई कॉन्टेक्ट नंबर आहे हिन ते तव्हां कंहिं बि वक़्तु कॉन्टेक्ट करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था

ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8051 0301-2196-851।

0: प्रोग्राम हिकु लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अदा केरु किथां खां?
1: सर फ़क़ीराबाद खां था ॻाल्हायूं।
0: जी अजा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
1: सर पहिरियों माथे में तकलीफ़ हुई, माथे में दवा वरिती हुयसि।
0: जी जी।
1: हाणे कमज़ोरी रहे थी जिस्म में।
0: अच्छा, किथां वरिती दवा? अच्छा,
1: हाणे तबियत माना सही थी आहे। हाणे माना जंगनि में सहाई बि रहे थी, माना थकिजी थो पवां, माना हा में सोर बि पए थो।
0: जी जी, ठीकु आहे। डॉक्टर साहिबु अव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर,
2: बिल्कुलु। हिकिड़ी मादे जी कमज़ोरी थी वेंदी आहे, उन खां पोइ ऐसा बि कमज़ोरी थी वेंदी आहे। हिकु त सौंफ़ हर खाधे खां पोइ मां हर मरीज़ खे ॿुधाईंदो आहियां, हर खाधे खां पोइ सौंफ़ जी चपटी जेको आहे सो वात में विझी छॾे माण्हू, उहा काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदे वारी आहे। उहा उनजी ऐसा बि कमज़ोरी बि दूरि कंदी आहे त मादो बि सही कंदी आहे। या उनखां अलावा अदपा बादाम, अदपा सौंफ़, अदपा मिसरी पाण में सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइण सां काफ़ी हद तक फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। लेकिन अञा बि कमज़ोरी घणी आहे त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारे वञनि। उन्हनि जी दवा थींदी आहे होम्योपैथिक में, जेकी हर लिहाज़ सां बहितर हूंदी आहे।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमून साहबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन ते कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुंज रग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि में जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी रोड, मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि।

0: कॉन्स्टिपेशन जेकॾहिं कब्ज़ आहे त उहा बि ख़तमु थी वेंदी आहे, अव्हांजो हाज़मो बि दुरुस्त थी वेंदो आहे। ऐं जेकॾहिं ईअं न त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त सौंफ़ तव्हां हर खाधे खां पोइ ईअं बि चॿाड़े सघो था, उहो बि अव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघे थो। चांहि जो इस्तेमालु घटि कयो, घटियूं शयूं ॿाहिरियूं शयूं इस्तेमालु घटि कयो, इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो। अञा बि फ़र्क़ु न पए त होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु करे सघो था असां वटां, अला कंदो उन में बि अव्हांखे शिफ़ा मिली वेंदी। वॾी
1: महिरबानी जी सर, प्रोग्राम जी लास्ट कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलामु अलैकुम जी, अदा कह रहे हैं किथां खां?
2: आप जमान ला दे आलानी का बेगाल है वो तुम बेहतर भी हुई
1: छा पूछन चाहिए डॉक्टर साहब का
2: तो अच्छा तुम क्या
1: जी अदा
2: ये गया ने तकरीर तो रहयो पेट में ना सो जीता से गर्दन में पट्टी दब है सो जाए डॉक्टर साहब का क्या कौन छा के इलाज केड़ो ने फीदो
1: रखियो इलाज बिल्कुल मौजूद है वहां रूबरू दिखा रहे डॉक्टर साहब के
2: जी
1: डॉक्टर साहब ॿुधाए थो वधीक जी सर
0: हा जी सर बिल्कुलु न देखे ॿुधाईंदो सर हुनजो इलाजु ट्रीटमेंट मौजूदु आहे अलाह ताला जी महिरबानी सां सभई पेशेंट असांजी इन होम्योपैथिक इलाज सां इन मादे जे बीमारियुनि में या पिते में जेके पथरियूं हूंदियूं आहिनि या जिगर ते जेकी सोज़िश चर्बी थी वेंदी आहे या गुर्दे में जेको किचरो अची वेंदो आहे उन सां अलहमदिल्ला हुनखे शिफ़ा मिली चुकी आहे। असां अधे खे बि इहो मशवरो ॾींदुसि त मेहरापुर हालाणी वेझी आहे, मेहरापुर हिकु दफ़ो अची साम्हूं वज्रपोटा पेट्रोल पंप तव्हां जेकी एड्रेस ॿुधाईंदा आहियो उहा हुते अची रूबरू ॾेखारींदा, इनशा ताला दवा जे हिसाब सां जॾहिं दवा मिलंदी मरीज़ खाईंदो त इनशा ताला काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो। वॾी महिरबानी
1: डॉक्टर साहब, वक़्त जो एहसास वक़्तु पूरो थी चुको आहे असांजे प्रोग्राम जो, आख़िर में मां कहिड़ो पैगाम ॾियणु
0: चाहींदा? बिल्कुलु वक़्तु चवे आऊं बादशाह, ऐं वक़्तु कंहिंजो इंतज़ारु न कंदो आहे, ऐं वक़्त जो टाइम तव्हां अंदाज़ो पाण लॻाए सघो था। मैसेज इहो आहे त हर वक़्तु ख़ुशि रहंदा करियो, ऐं छो जो ख़ुशी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदी आहे, ऐं रूह खे ख़ुशी तॾहिं तस्कीन पहुचाईंदी आहे जॾहिं रूह पाक हूंदो आहे। रूह पाक तॾहिं थींदो आहे जॾहिं अव्हां हर वक़्तु वज़ू में हूंदो ऐं नमाज़ पढ़ंदा हुजो। वॾी महिरबानी।
1: ऐं असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु बि अॼु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं सदा ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: और खड़े हो और कहें कि ये पाकिस्तान की सरजमीं पर हमला किया गया है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आप कभी नहीं नजर आएंगे करते। गुरम के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है एफसी पर हमारे जवानों पर, ये कतल आपको नजर नहीं आएंगे कि ये गुरम जाएं और कहें यदि आप गुरम आए हम अपने जवानों अपनी फोर्सेज के साथ खड़े हैं और हम किसी सूरत भी इस तरह की फायरिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बुजदिली की भी अलामत है। सोहेल अफरीदी सीएम केपीए उसकी काबीना उनकी पूरी तहरीक इंसान की गवर्नमेंट ये ना सिर्फ बुजदिल है ये समझदार भी है दहशतगर्दों के। इसमें मैंने कहा डीटीपी की बी टीम और डीटीएफसी भी ये नजर आता है और यही मुजरी है कि आप ये धरनों से भी भागे आओ ना कि मतलब आप आगे धरना दो, इनकी तैयारी भी कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ होकर आया हूँ, किसी किस्म की तैयारी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन सब्जेक्ट इनको चाहिए कि ये वहां पे

वफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। सुद समाव वारे वफाकी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो आहे त पीटीआई वारा फुसिल आहिनि, जंहिं सबबी हुननि लॉन्ग मार्च मुलतवी कयो आहे। हुननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी ॿी टीम आहे। केपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि नाहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी

सहकारी पीटीआय जी पॉलिसी आहे. पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद ॾांहुं ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुलतवी करण जो फ़ैसिलो. पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पिशावर में अहम इजलास लॉन्ग मार्च जी तयारियुनि ऐं हिकमत अमली जो जाइज़ो वरितो वियो. ज़रियुनि जो चवणु आहे त महमूद ख़ान चकसई ऐं अलावा नासिर अब्बास खे इतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो. के पी जे वॾे वज़ीर सुहेल अफरीदी चयो आहे त लॉन्ग मार्च लाइ तयारियूं मुकमल आहिनि, पोइ हिते न हटंदासीं.

0: इस्लामाबाद ना ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद कयो केपीआई पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज मुअतल अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद कयो वियो पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया वा मुख्तलिफ रोडन के बंद कयो वेंदो पीटीआई डी बिन में लॉन्ग मार्च खत्म करने वाली है केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है त लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली ना है पीटीआई पारा पान गिरफ्तारियों दे रहा है केपी हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बढ़ाना चाहे थी न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ए तुर्किया के परेही वजीर विच में मुलाकात बाद तिन्हीं मुल्क के आला फौजी सरबराहन जो इजलास सऊदी अरब में तलब सऊदी शहरन ते हमलन बाद पैदा थियल सूरतहाल हिकमत अमली ते गौर कयो वेंदो सऊदी परेही वजारत मूजिब तिन्हीं मुल्क जा फौजी अमलदार दिफाई मुआहदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारन तरीकन ते गौर कंदा तिन्हीं मुल्क के परेही वजीर खत्े में जटादार अमन लाए कोशिशों जारी रखने ते भी इतफाक कयो
1: When did you join our army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know when it comes to only newborn.
3: आप सुन रहे थे GAFM Network पर KTN News.
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापडा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 03000 310509।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03008 5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस।

प्राइस ब्यूटी सोप, मैं प्राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहराबपुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज़।

जी दोस्तों, तमाम सभी सुनने वालों को वेलकम भलीकार खुशामदीद जी एन वशद के और पखैर अगले।

जी दोस्तों बिल्कुल प्रोग्राम जे पैटर्न मौजिब असोते स्टार्ट इब्तदा कदाऊँ पैं प्रोग्राम की एक कहन कहें धमाल या कसीदे सा हाँ वंस अगेन मैं रिपीट करता चलूँ जैसा कि हमारे प्रोग्राम का इब्तदा आगाज होता है किसी न किसी खूबसूरत धमाल या कसीदे के साथ। तो कल हमने आपको सुनाया था संजनानी बिरादर का बहुत खूबसूरत प्यारा एक कसीदा मनकबत, और आज भी हम उन्हीं का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत कसीदा सुनाने जा रहे हैं। तो आज जो है कि हम संजनानी बिरादर का कसीदा शामिल करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, वो है मेरा सोहना पीर गाजी। तो मिलके एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से धमाल को, कसीदे को।

जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहरापुर। तो मेहरापुर वालों कैसे हो, यकीनन आप खैर वाफियत से अपने जो है कि घर वालों के साथ खुशो खुर्रम होंगे और हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा जी उसी के साथ आप सुन रहे होंगे यकीनन मिल्क राइस ब्यूटी शो और मिल्क राइस की ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल भी किए हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं और दोस्तों को रिकमेंड भी कर रहे हैं। हम और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है कि अगर रिजल्ट आपको बेहतर मिला है तो अपने दोस्तों को लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खूबसूरत सी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी शो, मिल्क राइस एक्ने क्रीम और ये हमारी तमाम तर खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं खुशी जनरल स्टोर मेहरापुर, फैजान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामराट मुगल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर। अच्छा जी और इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है कहीं पे भी अपने मनपसंद जनरल स्टोर पे तो आपने जो है कि हमारा हेल्पलाइन नंबर डायल करना है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-509। इस पे आपने बात करनी है। मलिक जफर इकबाल साहब हमारे बहुत ही प्यारे और मोहब्बती इंसान हैं और दोस्त हैं और उनके साथ सरदार सिद्दीक साहब होते हैं। इन दोनों में से किसी से बात करें मेरे सलाम लाजमी दीजिएगा।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्रिटिश शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहराबपुर। जी तो दोस्तों बैक टू बैक हम अटेंड करेंगे आपकी शामिल करेंगे कॉल्स प्रोग्राम में, तो हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली कॉल मिस हो चुकी है, उठाते कौन लकी या अनलकी कॉलर है अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, खैर साईं के था का साईं मुझा साईं मुझा हुसैन बख्श वेलकम बलिकार खुश आमदीद डाडी खुशी थी हमारी कॉल अटेंड करे
1: मेहरबानी साईं की आयो खुश आयो
0: दुआओं दुआओं अल्लाह एहसान आवा बुदायो केड़ा हालन खुश आयो दुआओं सर अल्लाह जा एहसान मालिक जा एहसान जी क्या जी सर जी असा खुशी थी असा ही अवाजी कॉल लगंदी आ त वाकई जो मोहब्बतन जो सिलसिलो वधी वियो आए उन प्रोग्राम में हन में भी पहरियो जने असा स्टार्ट वतो से त चंद कॉलर ही असा शामिल कंदा से आज माशाल्लाह जो आ त कॉल नॉन स्टॉप हली रही आए
1: ना बिल्कुल सर अलाई केतरी जो ना असा के मैसेज मिले तो नती के दो बिजी प्रोग्राम मक्याला
0: जी जी जडे त ही प्रोग्राम जी जी जडे त ही प्रोग्राम हिकड़े स्टेशन ता नशर थी रहयो आ ब्रॉडकास्ट थी रहयो आ पर तए हुंदे भी माशाल्लाह अवां जी मोहब्बतूं अवां जे इन शहर मां ए भर पासे मां जिते जिते जको आ त FM 94 जको आ त GFM बुधो वने पियो ओ ता कॉल अची रहियो
1: हां बिल्कुल सर आई मां के पारे में फीडबैक दिनो बादी बाद त आज भी फीडबैक जाते त
0: माशाल्लाह माशाल्लाह त मां चाहियां थो न घटि में घटि नवाबी संगत सॼी परचेस करे पोइ ॿियनि ताईं बि रिकमेंड कंदा वञूं
1: बिल्कुल सर ऐं इंशाल्लाह ताला ही नवाबी संगत इन कोशिश आहे त पंहिंजे ॻोठ में बि इहा अवेल कराए सघूं था
0: वाह वाह वाह वाह ॾाढी ख़ुशी थी ॾाढी ख़ुशी ज़फ़र साहब सां मिलिजो त पोइ मुंहिंजा सलाम लाज़मी ॾिजोसि बिल्कुल सर तव्हां जा सलाम छो
1: रखो
0: बिल्कुलु बिल्कुलु वाह चांहि बिल्कुलु साईं ज़फ़र साहिब चांहि पीआईंदो बिल्कुलु साईं अवां जहिड़े मोहबती माण्हू चांहि में महांगो न आहे अवां जहिड़ो मोहबती माण्हू बिल्कुलु बिल्कुलु असांखे वरी जॾहिं तव्हां दावत ॾियो त असां अचूं तव्हां चांहि पीअण बिस्कुट बि चांहि सां गॾु बिस्कुट बि चांहि सां गॾु पापो बि छा चवणु चाहींदो को दोस्तनि जा नाम शाम करणु चाहींदो को सलाम
1: बिल्कुलु सर असांजी नवाबी संघ जो हिकिड़ो नओं दोस्त बि जेको आहे

0: शामिल थी चुको आहे एजाज़ अहमद अबरो ऐं असलम चन्ना मुनीर अहमद सियाल ऐं मैडम सुंदस मंज़ूर पुलपोटो सैयद सिकंदर शाह ऐं असांजो 94 FM मेरापुर जो असांजो इंजीनियर अहसन सियाल अव्हांजो प्रोग्राम असांखे पहुचाई थो
1: कंहिंजो आहे इहो ठीकु आहे साईं इमाम बख़्श ज़रदारी जो असां नोट करे छॾियोसीं असां पंहिंजी प्ले लिस्ट में शामिल कयूं था ठीकु आहे सर इनशा इनशा वॾी महिरबानी थैंक यू कुर्ब लख लाइक अलाह हाफ़िज़ जी दोस्तो हिन महिल ताईं जंहिं बि जेको आहे त अञा मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट जो एक्सपीरियंस शेयर न कयो आहे या उहा अवेल न कई आहे त उहे हींअर ई जेको आहे त मेहरापुर जे तमामु वॾनि जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल आहे असांजी प्रोडक्ट अवेल करे सघंदा असांजी प्रोडक्ट में शामिलु आहे मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम जिन जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल आहे उन मां जा ख़ुशी जनरल स्टोर मेहरापुर फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहरापुर हफ़ीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अवां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी पंहिंजे मनपसंदि कंहिं जनरल स्टोर ते कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करिणो पवंदो असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-509 हिन ते कॉल करे अव्हां ॻाल्हि ॿोल कंदो मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिबु ऐं एम सिद्दीक़ साहिब सां ॾाढा प्यारा ऐं कुर्बाइता माण्हू आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजा सलाम बि ॾिजो ऐं प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराइजो ऐं प्रोडक्ट जे हवाले सां जेको फीडबैक आहे या जेको कुझु बि मामिलो आहे ॻाल्हि ॿोल आहे साईं जिन सां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था ऐं असां सां लाइव कॉल करण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-93-1967 हिन ते कॉल करे अवां असां सां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था लाइन ते गॾु कॉलर मौजूदु आहे कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां कॉल ड्रॉप करे हले वियो अदे जी हलो बि असां ॿुधीसीं ॿियो कॉलर शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां जी अदा
2: हलो
1: जी जी
2: सर मोहम्मद इब्राहिम खासकली
1: मोहम्मद इब्राहिम खासकली साहब वेलकम भलीकार खुश आमदीद कहिड़ा हालनि प्यारा ख़ुशि आहियो लख लाइक अव्हांजूं मोहबतूं अव्हांजूं अच्छा
2: हां सर
1: सादिक फकीर जो शामिल कंदा से बिल्कुल कोन को ट्रैक ठीक है पैरा
2: उन का करे बोल अथव कुछ न कर
1: हां
2: दफो लिखियो पको दिल ते तुजो ना
1: एक दफो लिखियो पको
2: हां तुजो दिल ते ना
1: एक दफो लिखियो पको तुजो दिल ते ना लाजवाब जुमलान
2: ते मथा किए लिखा मा बे के जो ना
1: वाह वाह वाह वाह कमाल कमाल जो गीता इंशाल्लाह असा कोशिश कंदा से प्रोग्राम में ना कलाम खे शामिल करण जी कंहिं दोस्तनि खे डेडिकेट कंदो नाम करणु चाहींदो कंहिंखे अर्पण चाहींदो
2: सारी सिंध जा जेके बि सोणा प्यारा माण्हू ॿुधनि था सभिनी खे सलाम
1: वाह वाह ऐं जेके मोचारा या कुझु कुझु ॿुधनि था असां
2: जहिड़ा सभिनी खे सलाम
1: वरी महिरबानी वालेकुम सलाम कुर्ब लव यू लख लाइक थैंक यू हाफ़िज़

जी दोस्तों, कॉलोनी जो सिलसिलो कंटिन्यू आहे, पर कुझु फरमाइशन जो बि जेको आहे त वज़न असांजे कमज़ोर कुल्हनि ते जेको आहे अची चुको आहे, त पोइ उहे असां वधंदासीं अव्हां जी हिकिड़ी फरमाइश पूरी करण जी कोशिशि कंदासीं। फौज़िया सूमरो जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ही ख़ूबसूरत ट्रैक अचो त गॾिजी इन ट्रैक खे एंजॉय कयूं।

जी दोस्तों शॉर्ट एक डिनर लियां जी फरमाइश पूरी कंदा से मिल्क राइस ब्यूटी शो जे तवसुल ही प्रोग्राम हली रहो है जिन जी दावा आहे त मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स टिन दिन में पंजो रिजल्ट दिखाइंदियन आ उन जी दलील भी मिली रहो है अवां दोस्तन जो रिस्पांस मिली रहो है त बिल्कुल टे दिन छा पर एक दिन में भी असा के बेटर रिजल्ट मिली रहो है दोस्त जी फरमाइश हुई त सादिक फकीर जो गीत है शामिल कियो वने बिल्कुल सादिक फकीर मुखे भी सडनली ओचते न मिलियो आहे ए नाओ सब शायद उन्हनि जा फर्ज़ंद आहिनि पोइ उन जी आवाज़ में ही ट्रैक अवां महबूबनि जी नज़र कयूं था अचो त गॾिजी करे ट्रैक इंजॉय कयूं नज़ाकत सादिक फ़क़ीर हिकु दफ़ो लिखियो पको मूं नाम दिलि ते तुंहिंजो

0: जी दोस्तों गीत के असर खदा से बैकग्राउंड में छाकाण तो वक्त भी बचो है थोरो आए जो आता लास्ट में एकड़ी फरमाइश असा भी शामिल कंदा से प्रोग्राम में एक कॉलर शामिल कंदा से असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आ है 0300 9499 6067। अस्सलाम वालेकुम खैर साईं के थागा
1: मैं बोल जा थारी मेरा बाबा
0: खैर साईं थारी मेरे बाबा का
1: थारी मेरे बाबा
0: महबूब साईं महबूब साईं वेलकम बली कर थैंक यू कॉल करण ला मेहरबानी प्यारा कुर्ब
1: आई काल बिजी थी यार अभी हानी हानी दिखाऊ पे सुर बजी आले मत समझ
0: बुद्धि रहा हवा प्रोग्राम मान मिली रहे है मोहब्बत हो नवा भाईरन जो दोस्तन जो काफी कॉलर्स हियर भी वेट में छा चवण चाहिदो टाइम शॉर्ट आ छा चवण चाहिदो
1: बस आई मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल क्यों दा दोस्तन के भी अर्जदा क्यों दा मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम जो जबरदस्त रिजल्ट आए
0: दाडी खुशी थी यो बुद्धि करे तमा या शामिल इस्तेमाल कर रहे हो मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम दोस्तन जा के नाम शामिल करना चाहिदो माज़र खायूं कॉल ड्रॉप थी वही जी दोस्तों मिल्क राइस ब्यूटी शो मिल्क राइस प्रोडक्ट आहन असाजो मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एग्नी क्रीम मतलब असा क्रीम तो हूँ अभी लाइफ में जिंदगी में असाजी फीमेल अदियों भेन मायरू उ ज्यादा इस्तेमाल कन्द मेल्स भी कंदा तो उनके बेटर का बेटर रिजल्ट दींदी ग्लो आनी थी चेहरे से उनको इस्तेमाल के तरीकेकार यो है तो सोप से पे तो मुँह धोई चंगी तरह गिचे तीन कंध तीन उनका रात जो अप्लाई कह मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम सुबह से सागी रूटीन से उनके साबुन से मिल्क राइस ब्यूटी सोप से मुँह वॉश कह खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले असाजी प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स असाजे जिन जनरल स्टोर से अवेलेबल हैं उन्होंने मजा खुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैजान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर इन के अलावा जैसे अव प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कें बे स्टोर से कराने चाहो था तो उन लाइ असो हेल्पलाइन नंबर डायल करो पव असो हेल्पलाइन नंबर है 0300 3105109 इन कॉल करो मलिक जफर इकबाल साहब एम सिद्दीक साहब से उ प्रोडक्ट की अवजी अवेलेबिलिटी थी वेंदी इन सा गड अज लगभग जो प्रोग्राम जो टाइम पैंजी पुजाणी से पहुतो है असा पंज का छह मिनट बचा एकड़ी फरमाइश अवजी असाए जिम्मे है सो असा उ प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कंदे थी सके तो एक अद असा कॉलर प्रोग्राम में शामिल क्यों तो दोस्तों असा लाइव कॉलिंग नंबर आ है 0300 9999 6067 केर लकी लास्ट कॉलर है अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा का हेलो जी केर दा जी जी केर किथा का
1: जीरो सण का सर वाहिद बख्श सर
0: वाहिद बख्श वेलकम बलिकार खुशामदीद है सैयद शहबाज साहब बुखारी के भी वेलकम बलिकार खुशामदीद चौंदा सर स्टूडियो सखर में
1: जी सर
0: अजी प्यारा को दोस्तन जा नाम शामिल करना चाहिए तो प्रोग्राम में टाइम फकत 5 मिनट बचे हुआ है
1: दोस्तन सर अब्दुल अजीज सर मेरा सर
0: जी
1: वही
0: मेहरबानी प्रोडक्ट के हवाले से गाल बोल कौन कई वहाँ इस्तेमाल क्यों पती है न ठीक है वही मेहरबानी लव यू सर थैंक यू ओके जी दोस्तों इन्हें असा गड अजो के प्रोग्राम जो टाइम पैंजी पुजाणी ते पहुतो अवां एंजॉय कंदो ही खूबसूरत ट्रैक आज़ार वडा थी उन्हनि जा सही सुर न सघंदे तन जा शाह साहब तो पोए पैंजे मेज़बान आबिद चौहान के इजाज़त दींदा

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहराबपुर, 03000 310509, 03000 310509। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए।

पीटीआई जो 27 सितंबर ते इस्लामाबाद दा ऐलान यल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर ताईं मुल्तवी करण जो फैसलो पीटीआई जी सियासी कमेटी जो पेशावर में अहम इजलास लॉन्ग मार्च जी तैयारियां हिकमत अमली जो जायजो वरतो वयो ज़रीन जो चवण आहे त महमूद खान चकसई अलामा नासिर अब्बास के एतमाद में वठण बाद ऐलान कयो वेंदो के पी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त लॉन्ग मार्च ज़रूर थींदो पर हतमी फैसलो सियासी कमेटी कंदी बैरिस्टर गोहर चयो आहे त इस्लामाबाद ज़रूर ईंदासीं।

इस्लामाबाद में ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद किया हुआ। केपीए पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल। अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद किया हुआ। पंजाब से भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाए गया, मुख्तलिफ रोडन के बंद किया वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद खान चकते के खत लिखी गालियन की दावत दी छी। जरियन जो चवण आया था वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के गालियन इलेक्शन कमीशन में मुकर्रन बाबत खत लिखो है। अपोजिशन लीडर के तर्जमान वज़ीर आज़म के खत मिलने की तस्दीक कर छी। हुकूमत गालियन ता फिरण जो भी इल्जाम लगाया।

सिंध हुकूमत पारां कूड़ियन ख़बरनि जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वठण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शजीला मेमण जी सदारत हेठि इतलात खाते जो इजलास। समूरनि शोबनि जे डायरेक्टर्स खे फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग ऐं असराइती मीडिया हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शजीला मेमण चयो त कूड़ियन ख़बरनि ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान रिसाइण वारी कोशिश बर्दाश्त न कबी। फेक न्यूज़ जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वरिती वञनि।

सिंध तरक्की पसंद पार्टी जो 15 नवंबर से कराची में अवामी जलसो करण जो ऐलान। डॉक्टर कादर मक्सी की सदारत हेठ हैदराबाद में एसटीपी जो इजलास। सिंध मोची अमां के नाले से जारी राबता मुहिम से गौर विचार। कादर मक्सी सिंध मुझी अमां रुगो नारो न पर सिंध से अवाम की तारीखी ए जज्बाती वाबस्तगी जो इजहार है।

0: जस्कम शहीद बशीर खान कुरैशी ग्रुप जिनके इम्कानी विधायक खिलाफ 8 नवंबर से कराची 15 नवंबर से लाड़कण में रैली कढ़ने का ऐलान कर छोड़ो। चेयरमैन डॉक्टर न्यास कालाणी है सिंध के इम्कानी विधायक खिलाफ कौम मुतहद थी चुकी है, नवा सूबा इंतजामी यूनिट कें भी सूरत में कबूल ना है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।

ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी ज़रूरत आहे।
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर Honda Motorcycle जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
5: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-310-5109।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस, इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

नचे थो मोर छो मन में घटा घन घोर आई आ करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ अचन था दूर ता घुंगरू वजे थी विज वांगुर तू अचन था दूर ता घुंगरू वजे थी विज वांगुर तू कई कोयल इए कूकू वरी का याद लाई आ तरह जी छांव में तोसा मुलाकातियों कयूं जे मां सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियों कयूं जे मां यह उजलत नशीनी थी वयूं जग खां जुदाई आ खबर ना है त तू चाहीं बटे पुरछाइयूं आहीं खबर ना है त तू चाहीं बटे पुरछाइयूं आहीं अंधारी रात आहे ऐं अकेलाई अघाई आ

हरण आयो तराई ते लहे थो सिज लयारन में। हरण आयो तराई ते लहे थो सिज लयारन में, न धरतीअ ते खुदा तस्वीर बि अहिड़ी बणाई आहे।

उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो ॾिसो हू सिज साम्हूं महकदे ते उस आई।

इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे अयाज़ इन गाल में आखिर भला कहड़ी भलाई आ नचे थो मोर छो मन में घटा घन घोर आई आ करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ।

जी दोस्तों अचो त गॾिजी म्यूज़िक मां मज़ो वठूं। मुमताज़ लाशारी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में गीत आहे, गुल अहिड़ी तरह था हवा में लुॾनि, को हा थो करे को न थो करे।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپر نالو آہی اعتماد جو खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहराबपुर 0300-310-5109
0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
0: खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

0: अलाह जा एहसान लख थोरा थोड़ो यो पाण खां रेडियो साइड के जो पहिरां मां जो आवाज़ ॿुधण पियो अचे रेडियो खां कुर्ब कुर्ब लख थोरा प्रोग्राम कीअं पियो लॻे शायरी अवां सभिनी महबूबनि जी शामिल हूंदी आहे सिंध जे वॾनि नाले वारनि शायरनि जी जी बिस्मिल पिणु शामिल करे सघो था पंहिंजी शायरी या चूंड शायरी
1: गुज़री वियो मूंखां तूं हवा वांगुरु हवान वांगुरु विछड़ी मूंखां दूर थी वई मूंखां दूर थी वई तोखे ॾाढो चाहियूं था तोखे ॾाढो भायूं था तोखे ॾाढो चाहियूं था तोखे ॾाढो भायूं था तूं हवा वांगुरु उजड़ी वई मूंखां तूं दूर थी वई अखियुनि खां दूर थी वई मूंखां तूं दूर थी वई तूं दिलबर मुंहिंजो राण हुई तूं सफ़ा तूं प्यारो हुई दीवानो उजड़ी वई तूं कुर्ब में कुर्बान खे हथ छॾाए राहुल में विखामी वई मूंखां तूं दूर थी वई सॼण मूंखां दूर
0: वाह साईं वाह वाह वाह असल में हिन में जेको आहे न अवां वराए वराए वरजाए काफ़ियो रखियो आहे साॻियो पर इहा असल में अवां जी फीलिंग्स आहे अवां जी दिलि जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं क़दुरु कजे थो अवां जी हिन शेर व शायरी जी अवां जी हिन तखयुल जी लाजवाब पहिरां खां दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो
1: अली हसन बाबू ऐं गुलाबी संगत ऐं हुन खां पोइ जेको प्यारो दोस्त हींअर मीराणी दोस्त आहे हुनखे सलाम ऐं जेको तारो ॾाढो मीराणी दोस्त आहे ॾाढो प्यारो आवाज़ हुयो हुनखे सलाम मोकिलियो
0: ऐं
1: अलताफ़ अॼु साईं कलाम ॿुधायो हिकिड़ो
0: कलाम बिल्कुलु शामिल कंदासीं फरमाइश करे
1: रिक्वेस्ट आहे
0: जी जी हुकुम कयो
1: असांजो कलाम ॿुधाइजो चमन वीरानी जो कलाम आहे त हल त हलो यार भई घुमण कचेरे
0: बिल्कुलु दोस्त प्रोग्राम ॿुधंदा रहो प्लेलिस्ट में शामिल कंदासीं अवां जी इहा फरमाइश थैंक यू पहिरां कुर्ब
1: महिरबानी
0: ओके लव यू टू जी दोस्तो ॾाढी प्यारी शायरी बि ॿुधण में मिले पई अवां सभिनी महबूबनि जूं ऐं ॾाढा अदब शनास दोस्त शामिल थी रहिया आहिनि प्रोग्राम में मां बिल्कुलु मोहतात थी करे हाणे करणु लॻो आहियां प्रोग्राम भुल चुक सनी सुखी का ग़लती उहा थोरो इग्नोर कजो कॉल ऑनलाइन ते मौजूदु आहिनि कॉल शामिल कंदासीं अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां हलायो कॉल शामिल कोन थी सघी आहे जी दोस्तो प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि आहे दिलि वारनि लाइ पिणी प्यारनि लाइ अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करे मूंखे बेहद ख़ुशी थींदी आहे न फ़क़त अव्हां खे मज़ो ईंदो आहे ऐं अव्हां खे ईंदो आहे न ईंदो आहे उन ॻाल्हि जो अव्हां ई जेको आहे त ज़िक्र करे सघो था ऐं मूं जेसी ताईं पंहिंजे नाक़िस अकल सोच मुताबिक़ मूं सोचियो आहे त मूंखे लॻी रहियो आहे त दोस्तनि खे मज़ो अची रहियो आहे बाक़ी हाणे कुझु असां अव्हां जे बिल्कुलु पूरे पैरामीटर्स ते मैट कोन बि करे सघंदासीं

सो हुकुमल जी अवां जे हुकुम जी तामील कंदासीं। शमन अली मीराली जी बैक टू बैक असां खे ॿिनि गीतनि जी फरमाइश थी वई आहे, तो हिकिड़ो गीत असां लाज़मी शामिल कंदासीं घटि में घटि। त पोइ ब्रेक ते वञण खां अॻु में असां ट्रैक प्ले कंदासीं, पर हिकिड़ी कॉल शामिल करे ॾिसूं था। अस्सलामु अलैकुम।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: और यूनानिमसली जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो इस बात पर मुत्तफिक हुई है कि इंशाल्लाह ताला हमारा लॉन्ग मार्च 4 अक्टूबर को इतवार के दिन पिशावर से रवाना होगा इंशाल्लाह ताला।
2: पीटीआई जो 27 सितंबर ते इस्लामाबाद दा ऐलानियल लॉन्ग मार्च मुलतवी 4 अक्टूबर ते करण जो ऐलान केपी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त असां जो लॉन्ग मार्च हाणे 4 अक्टूबर ते पेशावर खां निकरंदो जेको लाज़मी इस्लामाबाद पहुचंदो। फैसलो सियासी कमेटी इतफ़ाक़ राय सां कयो आहे।
3: या मौके पे जाएं और खड़े हों और कहें कि ये पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया गया है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे या कभी नहीं नजर आएंगे करते। कुरम के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है एफसी पर हमारे जवानों पर, ये कतन आपको नजर नहीं आएंगे कि ये कुरम जाएं और कहें कि जी हम कुरम आए, हम अपने जवानों अपनी फोर्सेज के साथ खड़े हैं और हम किसी सूरत भी इस तरह की फायरिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बुजदिली की भी रामत है। सोहेल अफरीदी सीएम केपीके उसकी काबीना उनकी पूरी तरीके से आपकी शक्ल मौजूद का गवर्नमेंट ये ना सिर्फ बुजदिल है ये समझदार भी है दहशतगर्दों के। जिस तरह मैंने कहा कि टीटीपी की बी टीम और टीटीए की सी टीम ये नजर आता है और यही बुजदिली है कि आप ये धरनों से भी भागे आओ ना निपटे तो आप आगे धरना दो, इनकी तैयारी भी कोई नहीं है। मैं तो खैर पख्तूनख्वा से होके आया हूँ, किसी किस्म की तैयारी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनको चाहिए कि ये वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। सिर्फ इस साल 2026 में 2456 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं खैर पख्तूनख्वा।
2: वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई खे लॉन्ग मार्च करण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। सुत समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्लाह तारण चयो आहे त पीटीआई वारा बुसिल आहिनि जंहिं सबबु ई हुननि लॉन्ग मार्च मुलतवी कयो आहे। हुननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकार ऐं टीटीपी जी बी टीम आहे। केपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़म्मत बि न आहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे।

0: खूबसूरत लम्हा शुरू हुआ एक अग्रीमेंट से। इन्होंने प्राइस ऑफर की, ड्राइवर के लिए भी ठीक थी, बस इतना ही करना होता है अपनों के लिए थोड़ा ज्यादा बचाने के लिए। इन ड्राइव, इसे कहते हैं फेयर।
1: इस्लामाबाद में ईंदड़ वींदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद किए हुए के पी ए पंजाब का ईंदड़ वींदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल। अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद किए हुए। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया गया, मुख्तलिफ रोडन के बंद किया वेंदो।